0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मैं की करूं।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: So what do we know? Partners?

0: I love the lyrics on this song. अब जाकर कायदे से मोहब्बत हुई है मुझे. प्रीतम चक्रवर्ती, अरिजीत सिंह का क्लासिक कॉम्बिनेशन. साथ में लिरिसिस आल्सो नीड टू बी मोर फेमस है. अमिता भट्टाचार्य ने इस गाने को लिखा है.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: 8:35 ऑन द क्लॉक ऑन मंडे की सुबह. द डे दैट नोबडी वांट्स टू वेक अप एंड गो टू वर्क. या इट्स द 1st of June. आई होप जो क्रेडिट होना चाहिए था वो हो चुका हो या सिर्फ डेबिट ही होता रहता है. बट यप, insurancemarket.ae need no introduction. You compare the top insurers out there at insurancemarket.ae so that you save up to 30% by comparing and buying the right car insurance at the right price. Call or WhatsApp 800-ALFRED 24/7 insurancemarket.ae. Coming up in just a while. इस गाने का नाम है मस्कारा. इट्स दैट माया माया जोन. याद है गुरु एआर रहमान का ये गाना वेदांग रैना इरशाद कामिल के लिरिक्स. कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल फ्रॉम मैं वापस आऊंगा.

प्लेबैक सिंगिंग वेंट आउट ऑफ द चैट इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग बिकॉज लेडीज वॉइस तो आपने सुनी, दैट्स नीलांजना घोष, शी इज अ प्लेबैक सिंगर, बट द मेल वॉइस दैट यू हर्ड इज एक्चुअली वेदांग रैना के खुद की आवाज है।

क्या बात है यार, मतलब टैलेंट का भंडार. वेदांग रैना इज इन दिस फिल्म, ही स्टारिंग इन इट, ही सिंगिंग इन इट, एंड 12th ऑफ जून इज व्हेन दिस फिल्म रिलीजेस. इट्स कॉल्ड मैं वापस आऊंगा, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली, म्यूजिक बाय AR रहमान. This is the Big Breakfast with me, Sid. 6:43 on the clock on this Monday morning. Good morning.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: Charlesmarket.ae. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
1: पति पत्नी और वो दो का ये गाना था दिलवाले चोर, रोचक कोहली की आवाज.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: And I'm quite surprised but very happy to report कि इस फिल्म की काफी अच्छी तगड़ी रेटिंग है यार. मतलब कुछ 6000 रिव्यू के बाद 7.5 on IMDb, not bad at all. आयुष्मान खुराना इज लाइक वन ऑफ दोज यू नो टैलिस्मैन एक्टर्स. जब भी वो कोई रोल करता है तो अच्छा ही. चॉइस ऑफ हिज रोल इज क्वाइट गुड. सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट. बट वामिका गब्बी, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह आर द पत्नी एंड वो दोज. एंड हु इज द पति? आयुष्मान खुराना, डायरेक्टेड बाय मुदस्सिर अजीज. एंड आफ्टर इट गॉट अ लॉट ऑफ ब्रिकबैट्स राइट इन द बिगनिंग, नाउ इट्स बीन स्टार्टिंग टू डू अ नाइस अमाउंट ऑफ बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड. स्लाइट ग्रोथ है. एंड yeah, third Saturday it's already spent in theaters and it's become it's all set to become Bollywood's fifth highest grosser this year. So it's happy days for the makers of this particular movie. But what is that one June release that you're really looking forward to? Let me do a story about this. By the way, agar aapko nahi pata, 106.2 Big FM, that's our Insta handle, 106.2 Big FM. Search for us on Instagram. Agar aap nahi follow karte to follow kar lijiye. Lots of infotainment you'll find out there, information which is very useful, reliable, and also all the entertainment that you can imagine behind the scenes. Hum log aapas mein kitni masti mazak karte hain, ye sab kuch aapko wahan par milega, 106.2 Big FM. What is that one June release that you're really looking forward to? I'm going to put up that poll that you can take part in. Here's the Mika Singh with Milegi Milegi. Show ka naam hai The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: this tune. It's Game On with Big Ticket.
1: A guaranteed 25 million dirhams up for winning.
0: Plus five more winners taking home 1 million dirhams each.
1: And four 25,000 dirhams winners every week, all the way to the final whistle.
0: Score big. There's plenty in play.
1: Buy your ticket now at bigticket.ae.
2: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
3: InsurersMarket.ae. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
4: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ दो घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
5: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.
6: कैसे हो भाई, क्या चल रहा है? दीस क्वेश्चंस आर सो इरिटेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डे, राइट? फर्स्ट ऑफ जून, मंडे. इट्स द मॉर्निंग आफ्टर द लॉन्ग ईद ब्रेक. हाउ आर यू डूइंग? मत पूछो यार, जस्ट गोइंग विद द फ्लो. एंड हाउ, व्हाट इज द फ्लो लुकिंग लाइक ट्रैफिक वाइज ऑन द रोड्स? 311 E11 पर हेडिंग साउथ बाउंड, देयर इज 6 to 9 मिनट्स का डिले. नॉट बैड फॉर 722 ऑन अ मंडे मॉर्निंग. ऑल्सो अल्ताउन स्ट्रीट पे ट्रैफिक आपको मिलने वाला है 5-6 मिनट का. पैरेलल टू E11 अलनादर इंटरचेंज 1 पे आपको ट्रैफिक मिलेगा. इंडस्ट्रियल एरिया 2 पर सहारा सेंटर की बहाल वाली सड़क जो है S115 गोइंग टुवर्ड्स E11, ऑल्सो देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ कंजेशन. यहाँ पर 6 से 8 मिनट एक्स्ट्रा बिताने वाले हैं. देन देयर इज इंडस्ट्रियल एरिया इन शारजा S102 शारजा रिंग रोड पे गोइंग टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी सिटी इन शारजा, ऑल्सो S112 पे आपको ट्रैफिक मिलेगा. एंड देन गोइंग वेस्ट ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स 311 फ्रॉम 611 ऑल्सो ट्रैफिक इज बिल्डिंग अप. मलिया स्ट्रीट पर S116 पे आपको मिलेगी 3-4 मिनट की देर. एंड 611 एमिरेट्स रोड पर हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स अलवीर भी 4-5 मिनट की एक्स्ट्रा टाइम आप बिताने वाले हैं. बिजनेस बे की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक ऑन E44 फ्रॉम D3 दैट इज अलखेल रोड पर भी 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा.
5: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: That was the fast song, fast track song of the hour, brought to you by Self Drive, and that was from the film Cocktail 2 called Mashuka.
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: All right, yeah, Mala, this is a song that had created a lot of controversy. Preetam Chakrabarti ne is gaane ko copy kiya hai. That's what people were saying. Original wala 90s ka ek Spanish song, usko unhone tapa hai. And then Preetam Chakrabarti ka reply bhi kafi savage wala tha. And he said ki haan, ye jo mere unpaid publicists हैं ये बात बात पे मेरी हर फिल्म के बाद खड़े हो जाते हैं एंड आई रियली वांट टू सिंसियरली थैंक यू गाइस फ्रॉम बॉटम ऑफ दैट्स व्हाट प्रीतम चक्रवर्ती सेड कि आपने इतनी पब्लिसिटी इतनी मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है सो थैंक यू सो मच दैट्स व्हाट प्रीतम चक्रवर्ती हैज सेड हाँ बट टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे इन केस यू आर ए बॉलीवुड फैन आज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स का बर्थडे है 1st of June इट इज आर माधवन बर्थडे सो चलो लेट्स प्ले आउट अ क्लासिक माधवन

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: आजा आजा आजा saying it for 18 years and then वो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता RCB
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2 The Beat of Bollywood
0: Back to back champions Rajat Patidar ne jab gaddi sambhali thi Ariel
2: Yes sir
0: How confident were you of Rajat Patidar be honest all right
2: इस बार और अगली last time
0: When you heard that Rajat I mean a couple of years ago When you heard that Virat Kohli ne now Rajat Patidar is going to be handling the captaincy, were you confident or did you think that nahi gayi bhai?
2: Mere naam to pehli baar suna tha. Sach mein maine pehli baar suna tha.
0: Sabne mostly sabne.
2: Yeah, yeah. And jab धीरे धीरे मैचेस होने लगे हाँ. नाम थोड़ा बढ़ता बड़ा होते गया रजत का पाटीदार बड़ा सब लोग ने लगे पाटीदार पाटीदार देन जब कप जीता कि तब समझ में आया कि ये तो लकी चार्म है भाई
0: करेक्ट
2: एग्जैक्टली
0: करेक्ट सो टू आई मीन टू टाइटल्स बैक टू बैक एंड नाउ इज इन द कंपनी ऑफ MS धोनी एंड रोहित शर्मा इज लाइक सर्टिफाइड वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम एंड ही सेड एट द एंड ऑफ इट दैट इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर हिम यार कि कब तो दरवाजा खटखटा रहा था कि प्लीज मुझे टीम में लो से लेकर नाउ ही इज वन बैक टू बैक टाइटल्स इट्स आई मीन इफ यू रजत पाटीदार यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ लाला लैंड This morning, right?
2: 100%. I mean, last year cup winner भी था. उसके बाद उसको एक भी एक international match खेलने का मौका नहीं मिला. उसको एक भी. And there is other players उनको back to back failure में हो रहे थे. फिर भी उनको मौका मिल रहा था.
0: Right.
2: But इस बार तो उनको जरूर मिलना चाहिए उसको. But किसको replace करोगे?
0: Exactly.
2: किसको करोगे? Yeah. इधर वैभव सूर्यवंशी भी है. दरवाजा खटखटा रहा है. ये भी आ रहा है.
0: यशस्वी जायसवाल doesn't have a place in the team. Rishabh Pant is not there. I mean, so forget about that. But Ariel is one of the biggest RCB fans that I know. You've been supporting the team since the beginning, right?
2: 2008. 2008 से.
0: कैसे करते हो इतनी जिल्लत? I mean, कैसे करते हो इतना इंतजार? I mean, it is so amazing. I find this story amazing. के supporting a team, this is what loyalty and fandom actually means, right? 18 years you've been supporting and then finally.
2: See, very honest, मैं सचिन तेंदुलकर का fan हूँ मैं. But yeah, since I am from Karnataka, obviously तो obvious choice था मेरे लिए RCB team को support करने के लिए. So मिला भी हूँ. तीन बार वो team को मिला हूँ. 2009 का team मिला हूँ मैं.
0: Initial team.
2: मोहम्मद कैफ था याद नहीं आ रहा है उनको मुझे
0: DK has changed a lot of teams, yeah.
2: exactly. उसके बाद 2016 में उनका जर्सी चेंज कुछ हुआ था होम जर्सी अलग था अवे जर्सी अलग था तब का टीम को भी मिला था मैं 2017 में एक मैच देखने बेंगलुरु स्टेडियम में भी गया था मैं अब इधर दुबई में थाली बजा रहा हूँ मैं आरसीबी जीत का
0: Amazing यार congratulations and I mean what a story that is back to back wins for the RCB but let me ask you Let's mm-hmm. ये तो हो गया एक सीजन खत्म हो गया mm-hmm. Now everybody's looking forward to the next season and wondering will they be the first team to actually win a hat-trick of titles what do you think
2: लगता है तो है
0: they're a very strong team लेकिन if you had to replace one player okay mini auction आएगा अगर आपको एक या दो नाम ऐसे लग रहे हैं जो कि अगले सीजन में you should replace tell me which are those players
2: बहुत मुश्किल है यार ये टीम तो कंप्लीट बैलेंस्ड टीम है 18 सालों बाद आरसीबी को इतना बैलेंस्ड मिला है
0: कीप और लीव ओके फॉर यू कीप और लीव जेकब डफी
2: लीव हाँ उसके बाद हम वैभव सूर्यवंशी को लेके आएंगे अब बहुत बड़े प्लेयर को लेके आएंगे हम लोग और बड़े प्लेयर को
0: कॉन्फिडेंस लक्ष्मी मित्तल बैठा हुआ है भाई राजस्थान रॉयल्स में वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियंस इन द वर्ल्ड एंड आरसीबी फैंस का ये कॉन्फिडेंस आज दिस मॉर्निंग यस
2: ओके
0: यू हैव द राइट टू बी ओके रोमारियो शेपर्ड
2: ए रखना चाहिए यार
0: Are you serious?
2: Of course, क्यों नहीं?
0: He hasn't performed the entire season, right?
2: अगले साल कर सकता है शायद क्योंकि एक गाना बना है ना RCB के फैन था रोमारियो रोमारियो गाना चेंज करना पड़ेगा इसलिए
0: All Ariel wants is an opportunity to sing that song in the stadium. So just because of that, Romario Shepherd stays in the team. That's what RCB fans are. They are all heart.
2: See, विराट जब तक विराट कोहली है हम सब है विराट कोहली रजत पाटीदार है हम सब है विराट कोहली रजत पाटीदार फिल सॉल्ट है हम सब है जब तक विराट कोहली रजत पाटीदार टिम डेविड फिल सॉल्ट
0: भुवनेश्वर कुमार ऑफ कोर्स जॉश हेजलवुड
2: हाँ ये सब है तो हम सब है
0: टुडे जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट आस्क यू द क्वेश्चन दैट्स ऑन एवरी नॉन आरसीबी फैंस माइंड What happens after Virat Kohli and Bhuvneshwar Kumar? Let's not get into that today. अचानक एरल के चेहरे पर एक्सप्रेशन चेंज हो गया।
2: I think next year तो जरूर खेलेंगे विराट कोहली। उसके बाद का सोचेंगे हम लोग।
0: सोचेंगे यार। जब हैट्रिक जीत जाएंगे उसके बाद सोचेंगे।
2: Exactly।
0: चलो ठीक है एरल।
2: एक बार इस साल कप नाम दो।
0: You should now change the version to हर साल कप नाम दो ना।
2: प्रति साला कप नमदू
0: Wow. If you agree with us, give us a call on 800-1062 नमदू
2: ये कॉल मारी कॉल मारी
1: Big 106.2

0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: There is now a 19-minute slowdown on E44. It goes all the way from Russell Court towards Al Quds Fort. Tak aapko ye slow-moving traffic milne wala hai, so be careful on Al Khail Road. Then मैदान स्ट्रीट पर गोइंग टूवर्ड्स बोलिंग सेंटर यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन. यहाँ पर भी आपको 5 से 6 मिनट तक की देर मिलने वाली है. शेख जायद रोड पे हेडिंग साउथ राइट आफ्टर ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट ऑल्सो यू विल फाइंड 3 से 4 मिनट की देर. D75 पे ट्रैफिक गोइंग टूवर्ड्स दुबई फ्रेम. देन D88 इज ऑल्सो अ बिट कंजेस्टेड. अल जाफरिया एरिया में आपको ट्रैफिक मिलने वाला है. करामा की इंटरनल रोड्स में उदमीथा की तरफ जाती हुई ट्रैफिक आपको मिलने वाली है. देन देयर इज E11 311 हेडिंग साउथ गोइंग टूवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. यू विल फाइंड anywhere between 12 to 15 minutes ka delay. There's D62 also quite congested. The good news is that E88 per going towards Sharjah International Airport, ab traffic is pretty much under control. Yahan par aapko sirf 5 se 6 minute ki der milne wali. And then going towards Al Abir from Al Khawanij 2 on 611, you'll find a 2 to 3 minute delay.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2. Yeah!

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 The Beat of Bollywood.
2: Yo, it's Alfred, you see. InsuranceMarket.ae. Car, health, home, life, travel, some business, to 20,000 reviews, we've got the crew. InsuranceMarket.ae. Largest in the UAE. InsuranceMarket.ae.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's my song by E. And.
4: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ. ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Morning is 8:57 on the clock and I put up a fill in the blanks question on our Insta page 106.2 Big FM. वहाँ पर जाइए, search कीजिए and you can take part in that for fun. आज एक Indian film star का birthday is not. I haven't said Bollywood side. It's Indian film star and he features in a song that I'm going to play out. चलो मैं अभी बताई देता हूँ आपको, इट इज आर माधवन्स बर्थडे, सो इन केस यू गॉट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर आप इस वक्त जा रहे हैं 106.2 Big FM पर, एक थोड़ा सा advantage aapke paas to go and answer that question. It's a fill in the blanks. I've given you some other interesting trivia about Madhavan that you probably didn't know as well. First of all is his birthday. Sunte hain classic 3 Idiots song right here on Big 106.2. This is the Big Breakfast with me, Sid.

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे, बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: आई कैन
2: बिग 106.2

0: The beat of Bollywood.
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: My God, what a track! This song is fire. It has taken everyone by storm on the internet. सब पागल हो चुके हैं इस गाने को लेके, including me. And I'm very sure you must be waiting कि यार हमारी टीम का भी गाना बना दे. His name is Darshan. You can go follow him on Instagram. He's done a very, very good job at least with this one song. And I think he deserves due credit for it as well. But I want to end this conversation on just one note. है ना, to all the people who said कि नहीं, ये तो तुम लोग फ्लूक में जीते थे last year. तुम्हें नहीं आता ये, and you know you don't deserve. 18 साल से तुम हारते आए थे, हमारे पास तो 5 ट्रॉफीज है, 6 ट्रॉफी जीतेंगे. यू नो हु यू आर, आई एम नॉट गोइंग टू नेम. ऑल आई वांट टू से इज आई सॉ वन पोस्ट एंड आई थिंक दैट इज ऑल आई वांट टू यू नो गो ब्रैग अबाउट, व्हिच सेड लास्ट ईयर वी एंडेड द वेट, दिस ईयर वी एंडेड द डिबेट.
1: शो मर्सी ऑन इट.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Big Traffic, brought to you by SelfDrive.ae.
3: Is it just me or is Monday not Mondaying anymore traffic-wise at least? Yaar, E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road pe traffic dikhi nahi raha. बहुत ही लाइट ट्रैफिक मिलेगा आपको मर्डर सिटी सेंटर के पास, जस्ट अबाउट 2-3 मिनट डिले ओवर देयर। D83 रिबात स्ट्रीट पे भी लाइट ट्रैफिक है, सिर्फ 3-4 मिनट का वहां पर डिले। एक छोटा सा कार एक्सीडेंट रासलखोर इंडस्ट्रियल एरिया 2 के पास हुआ है ऑन 18B स्ट्रीट। उसके अलावा रेस्ट एवरीथिंग लुक्स प्रीटी मच क्लियर। इफ देयर इज एनी अदर ट्रैफिक अपडेट दैट यू वुड लाइक टू ब्रिंग टू आवर नोटिस, देन 4305 इज द नंबर यू कैन लीव अस अ मैसेज ऑन। इट्स 10:41 ऑन द बिग क्लॉक, ज़ोहरा के साथ।

0: अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

ऑफिशियली हियर द सीजन दैट वी ड्रेड द मोस्ट ऑल ईयर लॉन्ग. उसकी बात करेंगे. लॉट्स मोर टू टॉक अबाउट एज वेल. माय नेम इज ज़ोहरा. आई कीप यू कंपनी अंटिल 2. वी आर हेडिंग इनटू द सेकंड आवर ऑफ द शो, द बिग मिक्स, राइट हियर ऑन बिग 106.2. वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। देख।

0: Absolutely यार, हवा बदली बदली सी है क्योंकि आज यानी कि 1 जून से अनाउंस हो चुका है दैट इट इज ऑफिशियली द स्टार्ट ऑफ समर सीजन इन द UAE.
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: एंड नॉट अ सिंगल पर्सन इज हैप्पी अबाउट दैट. आज तक कोई इंसान नहीं है जिसने खड़े होकर ये कहा होगा कि यार गर्मियां बहुत पसंद है मुझे, बड़ा मजा आता है जब पसीने छूट रहे होते. किसी को नहीं मजा आता. नोबडी लाइक समर. सो ऑब्वियसली समर का यहाँ आना इज नॉट समथिंग दैट एनी वन इज हैप्पी अबाउट. बट ऑब्वियसली वी नो कि हमें ये कुछ महीने गुजारने पड़ेंगे यहाँ पे एंड वी आर यूज टू इट राइट. यहाँ पे इतने साल हमने बिताए हैं कि अब गर्मियों की हमें आदत सी हो गई है. जब गर्मी नहीं होती, जून के बीच में बीच अगर अचानक से कभी बारिश हो जाती है, हम एकदम शॉक से हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया. बट नॉन द लेस लेट्स प्रिपेयर आर सेल्स फॉर द हीट टू कम दीज फ्यू मंथ्स. आपको पता है जून जुलाई एंड ऑगस्ट ये तीन महीने काफ़ी डिफिकल्ट होने वाले हैं हमारे लिए. सो लेट्स मेक श्योर वी गो थ्रू फ्यू पॉइंट्स टू टेक केयर ऑफ आर सेल्स दिस समर, है ना. एक तो नंबर वन, ऑब्वियसली वी ऑल नो वी हैव टू स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज जितना आप कम पानी पियोगे उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट ये गर्मी का मौसम आपके लिए होगा. दूसरा, अवॉइड द पीक सन आवर्स. मैंने बहुत से लोगों को देखा है पीक सन आवर्स में आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी होती है दैट जस्ट यू नो ट्रबल्स योर बॉडी, चैलेंजेस योर बॉडी, यू नो आपके ब्रेन पे, आपकी फिजिकल यू नो कैपेबिलिटीज पे वो बहुत असर करता है. जैसे जिम मत करो उस टाइम पे, यू नो ड्यूरिंग द पीक हीट आवर्स, बिकॉज आप अंदर बाहर करोगे, एसी से निकल रहे हो, धूप में जा रहे हो, धूप से निकल के एसी में जा रहे हो, दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट यू. आई रेड अ लॉट ऑफ केसेज, यू नो हीट स्ट्रोक, यू नो हार्ट स्ट्रोक, बहुत सारी ऐसी चीजें व्हेन यू प्रेशर योरसेल्फ्स अ लिटिल टू मच. सो अवॉइड डूइंग ऑल ऑफ दैट बिटवीन यू नो 12 टू 4. उसके अलावा दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट बिकॉज यू नो आई लव फैशन. सो ड्रेस स्मार्ट द समर सीजन. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इन गर्मियों में भी बूट सूट्स पहनकर निकल रहे होते हैं. यार आई अंडरस्टैंड फैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वो फैशन आप तीन महीने बाद भी कर सकते हो. यार इन तीन महीनों में नो बडी इज गोइंग टू केयर अबाउट योर फैशन. सो ड्रेस स्मार्ट, यू नो वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, लूज फिटेड क्लोथ्स कि जो चिपके ना आपकी बॉडी से, जिससे गर्मी पसीना ज़्यादा ना आए. लिनन इज आइडियली प्रिफर्ड सबसे ज़्यादा. सो ट्राई एंड वेयर एज लाइट यू नो क्लोथ्स इज पॉसिबल. डू नॉट स्किप योर सनस्क्रीन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन. ईट लाइटर मील्स स्पेशली ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द पीक सन आवर्स. वो भारी भारी मील जो आप खाते हो ना, उससे आपको गर्मी भी ज़्यादा लगेगी, बॉडी हीट भी ज़्यादा होगी. सो हैव लाइटर मील्स. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस, है ना. नेवर लीव योर चिल्ड्रन और पेट्स इन पार्क्ड कार्स. ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. यू नेवर नो, कोई टेक्निकल मैल फंक्शन हो जाए एंड यू नॉट एबल टू ओपन योर कार, यू नो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इफ़ यू लेफ्ट एनी वन बिहाइंड इन लॉक्ड कार्स. सो डू नॉट डू दैट. Keep your home cool, जितना cool हो सके as possible. Obviously, that does not mean blast your AC 18 degrees पे. Always keep it, you know, at like good 24 degrees so that it is pleasant also and it is cool also. And know the signs of heat exhaustion. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Dizziness, headaches, you know, excessive sweating, nausea, fatigue, these are all signs. So अगर आपको excessive तरीके से इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है, be very, very careful and head straight to a doctor if you feel like this is not normal. So let's make sure we keep all of this in mind and welcome the summers.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ये मामो
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
5: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
6: ये है ज़ोहरा on the Big Mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood. Now listen to your favorite songs on repeat without any interruption. Download the Big Fan app for unlimited song selection. Available on iOS and Android.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
2: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
3: ये है ज़ोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

हर्षदीप कौर की आवाज कत्या करूं मैं भी यार, मतलब अब मैं बस वेट ही कर रही हूँ। अभी सारी रात मैं यही सोचती रहूँगी कि आईपीएल खत्म हो गया है, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूँ, उन चार घंटों के साथ क्या करूँ जब मैं मैचेस देखा करती थी। इट्स गोइंग टू फील अ लिटिल एम्प्टी फॉर सम टाइम राइट नाउ, एंड स्पेशली नाउ दैट आई एम सो हैप्पी एंड कंटेंट विद द आउटकम ऑफ इट दैट आरसीबी इज़ वन। तब तो और भी मुझे नहीं पता यार मैं क्या करूँ यार, अगले साल तक वेट करना पड़ेगा दैट वी परफॉर्म वेल अगेन, होपफुली विन वेल अगेन। एंड इट्स सो सरप्राइजिंग यू नो ऑल दिस वाइल, इतना ट्रोल होने के बाद जब यू नो दूसरी टीम्स के यू नो फैंस और फ्रेंड्स मैसेज करके कहते हैं यार अगले साल हमें जीतने दो, नहीं हम 17 साल हारे अब तुम हारो।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी।

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. InsurancemarketMetro.ie.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: 1:17 on the big clock. Hanji Zohra ke saath ho on the big mix all the way until 2. It is the last hour of the show. Is ghante hum baat kare about something very interesting, ha? To aise log aapki zindagi mein bahut honge, hai na? Hundreds of people that you may have known jinme ye traits hai, hai na? But we never knew ki in cheezon ke liye ya in logon ke liye अलग अलग नाम बनाए गए थे. नाउ एट लीस्ट इन द इंग्लिश डिक्शनरी ऐसे नाम एग्जिस्ट भी करते हैं. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ. मैंने ये पोस्ट देख लिया एंड आई फील लाइक आई वॉन्ट टू रिमेंबर दिस बट आई एम नॉट गोइंग टू रिमेंबर अ सिंगल वर्ड जो मैंने इस पोस्ट में पढ़ा है. बट चलो लेट्स टेक यू थ्रू इट, है ना. सबसे पहला, हर किसी की जिंदगी में ऐसा कोई बंदा है, स्मेल फंगस. नाम ही इतना घटिया तो ट्रेस कितने गंदे होंगे सोचो. यस, स्मेल फंगस इज एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक. अ पर्सन हु फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीथिंग, अ हैबिचुअल कंप्लेनर एंड अ मिजरेबल क्रिटिक. दैट पिंकी आंटी इन एवरी ग्रुप जो आपको हर किसी चीज में, आपके खाने में नमक कम था बेटा, अरे आपका रंग बड़ा सांवला सा लग रहा है, आपके कपड़े आपने दोबारा पहने हुए ना, ये मैंने उस शादी पे भी देखे थे. ये क्रिटिक जो हर किसी चीज में नुक्स ढूंढती है, ये पिंकी आंटी, इसको कहते हैं स्मेल फंगस. Great, very interesting word, definitely adding to the dictionary. Number two, हर किसी की लाइफ में ये भी रहा होगा, quid nunc. This means a nosy busy buddy. Basically someone who always needs to know everyone else's business. This is another auntie. Let's call her, you know, Rukmini auntie. जिनको बाकी सब क्या कर रहे हैं ना वो जानना होता है. Like खुद के काम से मतलब कुछ काम नहीं उनको, उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा होगा does not matter, but दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे ये सब up to date अपने आप को रखना है. This is a quid nunc, this person. नंबर थ्री पे है गॉबमूश. दिस इज अ वेरी गलेबल पर्सन हु बिलीव्स एनीथिंग देयर टोल्ड. आई थिंक दिस इज मी एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन द सेम कैटेगरी जो बड़ी आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. दैट पर्सन इज कॉल्ड अ गॉबमूश. नाउ द लास्ट वन विच इज द मोस्ट रिडिक्युलस वन, बोर्बरिग्मस. Borborygmus is a word basically for the rumbling or the gurgling sound that your stomach makes. आपको जब भूख लग रही होती है जोर शोर से, तो जब आपकी जबान नहीं बोलती तो आपका जो पेट बोलने लगता है ना, वो उसको बोलते हैं borborygmus. Now I think ये borborygmus जो word है मुझे तो बिल्कुल नहीं याद आने वाला भूख में. I feel ये borborygmus Jumeirah, Umskin और you know Emirates Hills वाली side में लोग बोलते होंगे. मेरे वर्खा वाली side में तो इसको पेट से गुड़गुड़ आवाज़ आना ही कहते हैं.

0: عددهم ابي الشريف هو خير، فالشرف نصيب لك كبير جدا. سر هم بھی تو دیکھیں کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا.
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood.
2: Imagine your home powered by Next Level Fiber. With Fiber Plus from E&, enjoy advanced Wi-Fi 7 performance for faster streaming, smoother gaming, and expanded coverage in every room. More speed, more coverage, more performance. Experience the difference with Fiber Plus. Visit E&, to know more. T's and C's apply. E&, go for more.
1: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: ट्रैफिक हाल फिलहाल नॉट सो बैड ऑन द रोड. E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा. दिस इज अराउंड मर्व सिटी सेंटर. 2 से 3 मिनट का वहां पर डिले है. D83 रिबात स्ट्रीट फेस्टिवल सिटी के आसपास अगर आप है तो वहां पर भी लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा. 5 से 6 मिनट का डिले थोड़ा सा है वहां पर. D85 बनिया स्ट्रीट इज शोइंग बंपर टू बंपर ट्रैफिक विद जस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स. E44 D3 वाले एग्जिट के पास भी आपको बंपर टू बंपर ट्रैफिक मिलेगा. 3 से 4 मिनट का वहां पर डिले है. एनी अदर ट्रैफिक अपडेट आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं 4305 पे.
1: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
5: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
1: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Mashuka cocktail to say right here on Big 106.2. This is the beat of Bollywood. I keep you company until 2.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Yes, that's right. This is The Big Mix with me, Zohra. It is brought to you by insurancemarket.ae that offers you simple, fast and stress-free car insurance. Kyunki Alfred jo hai, is definitely going to be there for you 24/7 for your assistance. And you can also save up to 30% by comparing. All you have to do is call 800-ALFRED 24/7 and they will take care of you. This is insurancemarket.ae.
2: Hey, budde.
3: Namaste.
2: पहले आप आदत कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे।
3: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
2: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
3: नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
2: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ रहा है, देखिए।
3: ये गुस्सा नहीं है।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae.
4: insurancemarket.ae.
5: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है ज़ोहरा on the Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: पति पत्नी और वो दोस्त से दिल वाले चोर. दिस इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट फ्रॉम द एल्बम राइट हियर ऑन पिक 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड. इट इज ऑलमोस्ट 2 PM. दैट इज उज्जवल खन्ना's एंट्री इन द स्टूडियो.
1: कैसे मतलब जो शब्द है वो चेंज हो गए ना, पति पत्नी और हमारे दो की जगह पत्नी पति और वो दो.
0: ओह गॉड, वाओ, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट,
1: मतलब कैसे ट्रैजेक्टरी बदल गई. आई थिंक एग्जैक्टली, आई थिंक इट रेजोनेट्स विद बैंगलोर नाउ. With Royal
0: Challengers. Oh, how the trajectory has changed. Oh, like that.
1: Puri team aur hamare do cup.
0: Oh, do cup.
1: Badi khush ho rahi ho.
0: Pati nahi, patidar.
1: Aur dusra nahi aayega.
0: Patidar Kohli aur unke do cups.
1: Aur unke do cups. Wow. Aaj red pehen ke aayi hai.
0: Of course.
1: Puri duniya mein flaunt karegi apna jhanda leke.
0: In celebration of my team.
1: Lehra to nahi di apni balcony ke bahar tune RCB ka jhanda.
0: मेरे बालकनी के बाहर लोग खड़े होते हैं देखने को कि ये चिल्ला रही होगी अंदर से.
1: But I think your neighbors are really nice, है ना? तेरे इतना शोर शराबा वो सुन लेते हैं, otherwise तो generally complaint हो जाते
0: हैं. My neighbors are equally loud.
1: Okay, so
0: in fact there is a neighbor. So do you call neighbors from opposite building also neighbors?
1: Yeah, mostly.
0: मेरे opposite
1: neighborhood
0: side, neighborhood की building. So मेरी opposite side जो building है,
1: yeah.
0: From the balcony मैं देख पाती हूँ उनके living room की TV. And I have seen a hardcore RCB supporter in that house. I do not know this person. मैं कभी मिली नहीं हूँ इस इंसान से. मुझे पता भी नहीं इनका रूम नंबर, फ्लैट नंबर क्या है. इतना पता है कि मुझे दिखता है बालकनी से.
1: I think
0: he's watching the same.
1: I think the hood that you live in is, I think, predominantly RCB hood.
0: मैंने अपना लोकेशन भी ये देख के चूज किया था कि मेरी फॉलोअर्स, मेरी जनता कहाँ पे है, मैं वहीं पे रहेंगी.
1: चलो गुड, नाउ आई थिंक यू कैन प्लान फॉर योर हैट्रिक नेक्स्ट ईयर.
0: Of course, yes, that is the plan right now. On that positive note, I'm going to take your leave. Meri Awaaz Mera Andaaz, agar aapko pasand aaya ho, make sure to follow me on Instagram. Zohra Amin is my handle over there. Also, do not forget to follow us on 106.2 Big FM. All the fun content goes up on that page. So follow us on our socials. I will now see you tomorrow morning, 10 baje on the Big Mix until 2. Until then, stay blessed and stay tuned to Big 106.2. We are the beat of Bollywood.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। देख

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Two splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. InsuranceMarket.ie.
2: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by InsuranceMarket.in.

0: KK की आवाज, the track is आपकी दुआ उज्जवल खन्ना के साथ। दुआ थी और साथ में दवा भी थी और दवा का नाम था दूध। आज है वर्ल्ड मिल्क डे, उज्जवल खन्ना के साथ हैं, आप सुन रहे हैं द बिग लाइव। और ये दूध पी पी के हट्टे कट्ठे कट्ठे हो गया, हट्टे कट्टे हम हुए।
1: द बिग लाइव विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: एंड अभी भी अगर दूध नहीं मिलता तो हमें लगता है माय गॉड क्या हो गया हमारे साथ, है ना? Like we were so in love and fondness of milk, and I guess ये organically हमारे दिमाग में डाला गया था about milk and the benefits of milk, and बहुत ही crazy marketing हुई थी millennials जब बड़े हो रहे थे, which is us, and parents always believed that milk is the thing, and I guess उस white revolution की वजह से जो great marketing campaigns हुए थे हमें सोचवाया गया कि दूध सब कुछ है, and then of course we made ads and we learnt about it and we always ensured कि दूध हमें पीना ही है एक ग्लास। आप चाहे उसमें चॉकलेट वोकलेट डाल के पियो, चाहे हॉर्लिक्स पियो या फिर सादा दूध पियो इलायची डाल के कूट के, बट दूध वॉज इसेंशियल। आज टुडेज टाइम पीपल आर मोर अवेयर एंड वी अंडरस्टैंड दैट मिल्क इज नॉट अ कंपल्शन, इट प्रोबेबली इज अ फीड ऑफ व्हाट वी हैव बीन टोल्ड अगेन अगेन अगेन, एंड दैट्स व्हाई हमें लगता है कि दूध है तो सब कुछ है। इसलिए आज एंटी लैक्टोस या फिर लैक्टोस इंटॉलरेंट नाम के जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी आ गए हैं मार्केट में। बट अगेन यू नो रीलिविंग दोज डेज जब दूध वाज एवरीथिंग एंड दीज कमर्शियल्स वर एवरीथिंग एज वेल। हैव अ लिसन।
2: दूध दूध

0: तो थैंक यू वेरी मच।
1: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: खाने की बात चल रही है एंड साथ में चल रही है वर्ल्ड मिल्क डे की बात. आज दूध दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस. एंड कितनी सारी ऐसी चीज़ें, मतलब मिठाई के बिना, दूध के बिना मिठाई असंभव है. स्पेशली इस लॉन्ग ब्रेक में हमने इतना जो
1: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: मीठा खाया है उसका तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है. नाउ लुक योरसेल्फ इन द मिरर एंड स्टार्ट वर्किंग आउट. दैट्स अ great way to start again. Now, again, a great way to start is by defining the best milk sweets. Kaun sa meetha aapko pasand hai jisme doodh hi doodh hai? Now, things are kheer, choices aapke paas hain. Malai ke laddu, okay. Then there is ras malai, mishti doi, okay. Bengal ki ek khas yogurt dessert. Rajbhog, which do you think do you like the best? In fact, there's one more. Shahi Tukda. Ujjwal, why are you taking us back? We've just surrendered the meetha this week and you're again taking back to the sumptuous desserts. Kya kare bhai? Milk day hai, kuch na kuch to baat karni padegi. Fast track song of the hour. Filhal Palak Muchhal baat karne bhi aayengi, gaana sunane bhi aayengi. The track is Kaun Tujhe Aapke Saath. Until 5, aap sun rahe hain The Big Life.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो जियो खुश रहो मुस्कुराओ क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपने कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now.
1: This is Fan Network News from the BBC.
3: BBC News with Justine Green. Iran says it's targeted an American military airbase after the United States launched renewed strikes on Iranian targets over the weekend. The Revolutionary Guard didn't give the location of the base, but Kuwait says it's come under attack. Washington says it struck Iranian radar and drone sites in the city of Gorok and the island of Kashim. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has ordered attacks against Hezbollah in a southern district of the Lebanese capital, Beirut. Hezbollah has been firing barrages of rockets and drones into northern Israel as Israeli troops expand further into southern Lebanon. South Africa's parliament is starting an impeachment inquiry into President Cyril Ramaphosa over a scandal involving the theft of more than $500,000 from his farm. A parliamentary committee is holding its first meeting today. France says it's detained a sanctioned Russian oil tanker in the Atlantic with the help of Britain and other allies. President Macron said it was unacceptable for ships to circumvent international sanctions. Hungary's new Prime Minister, Peter Modrow, says the government will start legal proceedings to remove the country's president if he refuses to resign. After meeting President Tamás Soljak in Budapest, Mr. Modrow said the constitution would be amended to secure democracy. Health officials in the Democratic Republic of Congo have celebrated the recovery of 5 patients infected with Ebola. 4 of the survivors were nurses who'd fallen ill while caring for Ebola patients. Bangladesh has raised fuel prices for the second time in 6 weeks as the government seeks to ease pressure on state finances affected by the conflict in the Middle East. Experts have warned the increase in petrol and kerosene prices could add to inflation. And China's Coast Guard says it's conducted what it called law enforcement patrols east of Taiwan in response to plans by Japan and the Philippines to open formal maritime demarcation talks. BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Henna Speedy Hair Color, your quick fix solution for changing back the lost colors of your hair in just 7 minutes. Big 106.2.
4: कहाँ से शुरू करूँ? बस इतना समझ लो कि उस जैसा मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं। कभी वो मासूम है, तो कभी शैतान।
5: When the afternoon slows down, he speaks of love, life and light. The Big Life with Ujjwal on Big 106.2, the beat of Bollywood.
6: Good afternoon to you, Big 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं। आई एम टू माय सेकंड आवर ऑफ द शो। आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ। रोमकॉम की बताइए एक अच्छी बात क्या होती है कि रोमकॉम आपके सर पे चढ़ जाती है, स्पेशली हम जैसे लोगों के, मूर्खों के सर पे, जो बड़े ही इमोशनल किस्म के लोग होते हैं। मिलेनियल जो प्रजाति है काफ़ी इमोशनल किस्म की प्रजाति है। इन फैक्ट द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स, इट ड्वेल्स ऑन इमोशंस एंड व्हाट बेटर देन यू नो ये जवानी है दीवानी। 13 साल कल पूरे हुए इस पिक्चर को। इस पिक्चर ने हमें बहुत सारी चीज़ें एहसास करवाई और हम उसी एहसास में रहने लग गए, चाहे वो यूथ जब हम जवान थे उसका स्पिरिट हो, फ्रेंडशिप, आज़ादी, हमारे ख्वाब, हमारी एस्पिरेशन, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, हमारा प्यार, इन सब के बीच में ये सब चीज़ें इस फिल्म में हमें सिखाई। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 90s की रोमकॉम्स ने भी हमें सिखाई, और इसलिए रोमकॉम्स का जो चैप्टर है ना वो कभी बंद नहीं हो सकता 90s के लोगों के लिए, मिलेनियल्स के लिए। सो लेट्स Go back, rewind some absolutely delicious romantic films of the 90s. प्यार, जज्बात और उसके साथ थोड़ी बहुत शरारत. Let's kickstart with Yes Boss. The track is Ek Din Aap. आपके साथ until 5. आप सुन रहे हैं The Big Life. उज्जवल खन्ना के साथ on Big 106.2.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2।

और देर से आपने गाना सुना बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ। एवोल्यूशन शुरू हुआ 90s से रोम कॉम्स का, एक्चुअली उससे पहले भी था, 80s में भी रोम कॉम्स थी, लेकिन ये वर्ड का जो डेरिवेटिव था उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसके बाद 90s में इसका एक नया वर्ड आया, रोम कॉम्स बोली गई, और उसका जो एवोल्यूशन है वो आगे ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू द 2000s, जब हमने कल हो ना हो देखी, जब हमने हम तुम देखी, जब हमने ये जवानी है दीवानी देखी। उसके बाद हम आगे चले गए, फिर OTT आ गया, फिर OTT ने

0: देखी, जब हमने ये जवानी है दीवानी देखी, उसके बाद हम आगे चले गए, फिर OTT आ गया, फिर OTT ने रोमांस को, रोम कॉम्स को एक थोड़ा सा रियलिज्म दे दिया, जिसमें आयुष्मान खुराना की फिल्में बहुत काम आती हैं। उसके बाद जब वी मेट, बैंड बाजा बारात, ये सब रोम कॉम्स की कैटेगरी में आती हैं। बट 90s वॉज द बेस, जिसको कहते हैं एक प्रेमिस, जिसको कहते हैं एक पिवट, उसके आसपास शुरू हुई कहानियाँ, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, एक एक्शन का जोन था, उसके बाद रोम कॉम्स का जोन आया, एंड देन ऑफकोर्स इट sort of set off on the OTT. Blockbuster film thi Pardes, again Shah Rukh Khan, aur isi se thoda sa leaf liya tha aur banayi thi Pyar Kiya To Darna Kya, jisme बड़े भैया अरबाज खान वो आ गए थे इन कंटेंशन, एंड ऑफ कोर्स चुप चुप के मिलना बिटवीन काजल एंड सलमान खान, दैट केप्ट हैपनिंग। उसी फिल्म से गाना जो प्यार किया तो डरना क्या, द ट्रैक इज ओडली चुनरिया तेरे नाम की, आपके साथ अंटिल 5 आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ, एंजॉयिंग द म्यूजिक ऑफ द 90s, स्पेशली द रोम कॉम जॉनरा।
1: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
2: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
3: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

कभी हाँ कभी ना से आपने गाना सुना कुमार शानू की आवाज उज्जवल खन्ना के साथ बिग 106.2 पे 90s के कुछ रोम कॉम्स आइकॉनिक रोम कॉम्स फिल्म्स के गाने आप सुन रहे हैं। लिटरली हर जो दूसरा गाना है वो शाहरुख खान का है, एक आधा सलमान का है, एक आधा यू नो अजय देवगन का है, बट मोर लेस इट वाज ऑल शाहरुख खान्स वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट लिविंग इन इट। एंड देयर इज अनदर शाहरुख खान आइकॉनिक फिल्म, नाउ दिस इज अ कल्ट, दिस विल ऑलवेज ऑलवेज बी द फर्स्ट फिल्म ऑफ रोम कॉम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट DDLJ। हाँ, इसमें ड्रामा भी था, इसमें फैमिली ड्रामा भी था, बट एसेंशियली इट स्टार्टेड ऑन अ रोम कॉम नोट। DDLJ से गाना मेरे ख्वाबों में जो आए, काजोल एंड हिज एक्सलेंसी शाहरुख खान द किंग ऑफ रोमांस प्लेइंग हिज पार्ट। टेक इट अवे आपके साथ अंटिल 5 o'clock।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 PM to 12 AM on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2, The Beat of Bollywood. Big 106.2, Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: सारे हम कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से हम सिंगिंग कर लें, और अंदर कहीं ना कहीं सबका एक सिंगर छुपा हुआ है। और अगर थोड़ी सी ट्यूटोरियल क्लास लेनी है स्टार्टिंग में, मतलब ख़राब माइक हो, सब कुछ हो, तब भी आप कैसे गा सकते हैं, तो सर के ये जो ट्यूशन सेंटर है जिसको हम कहते हैं चैम्पियन, जो किताब है वो चालू है, वही गाना मैं प्ले कर रहा हूँ सोनू निगम की आवाज़। नाउ लिसन टू द फुल इमोशंस ऑफ दिस सॉन्ग आपके साथ अंटिल 5 o'clock फ्रॉम द फिल्म ब्रदर्स। मेरा नाम उज्जवल खन्ना, बिग 106.2।
1: सपना जहाँ

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: हेलो ट्रैफिक, बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ 4-5 दिन की शांति थी। हाँ, शाम को ट्रैफिक होता था, बहुत सारे लोग ईद मुबारक और ईद के जो पार्टीज थे, जो डिनर्स थे, उसके लिए जाते थे। शाम को रात को जाम होता था, स्पेशली अगर आप हो नेशनल पेंस के आसपास वहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि मतलब मूविंग ट्रैफिक था। अब फिर से अटक गया मामला। शेखजाद रोड पर अगर आप हैं तो ट्रैफिक आपको स्लो मूविंग मिलेगा। अगर आप इस वक्त जा रहे हैं अराउंड डाउनटाउन के साइड पे तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा। ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट के आसपास इंटरमीडिएट ट्रैफिक आपको मिलेगा। ओवर टू नेशनल पिंस, इफ यू आर दुबई बाउंड देन ठीक ठाक है, बट इफ यू आर शारजा बाउंड देन ऑफकोर्स 20-25 मिनट्स का डिले आपको मिलेगा। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं इस महीने के शुरू होते ही, दैट इज राइज इन द फ्यूल प्राइजेज। आई नो समटाइम्स इट इज इम्पॉर्टेंट टू कारपूल। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपका कोई कलीग है जो आपके आसपास के टाइम पे आता है, प्लीज कारपूल कीजिए। 2 दिन आप चलाओ, 2 दिन वो चलाए, पैसा भी बचेगा, तेल भी बचेगा, एंड द एफर्ट आल्सो वुड लार्जली रिड्यूस इंक्लूडिंग योर स्ट्रेस। एनी अदर इंफॉर्मेशन यू कैन टेक्स्ट अस ऑन 4305 व्हिच इज 4305।
1: selfdrive.ae नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द यूएई स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिग 106.2। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मीठी चाशनी।
1: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
2: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अरिजीत सिंह के बाद सैयारा से आपने गाना सुना। कुछ होता है ना दर्दीलो गानों में, कुछ बात होती है, इसलिए वो मतलब चार चार पाँच पाँच महीनों तक ट्रेंड करते रहते हैं और हम भी ऐसे अचंभित होते हैं एज पीपल यू नो एज ब्रॉडकास्टर्स कि यार ये क्या है इस गाने में, मतलब कुछ तो बात होगी। एंड देन इट ऑल कम्स टू मोरोस एंड सैडनेस एंड व्हाई पीपल ऑलवेज हैव दिस अफ्लिक्शन टुवर्ड्स
1: इतनी सारी
2: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
0: मेलंकली इसलिए
1: अफ्लिक्शन मेलंकली और क्या था अफरोज नहीं क्या क्या नो
0: ये
1: इमरोज
0: ये मंडे बात कर रहा है 6 दिन के ब्रेक के बाद
1: बहुत मुश्किल होता है यार आफ्टर अ ब्रेक एंड आई थिंक एक नया रूल होना चाहिए लॉन्ग वीकेंड जैसे हो तो मंडे की जगह ट्यूसडे से शुरू होनी चाहिए।
0: हाँ बट एक्चुअली मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर लोगों को ऑप्शन दिया जाए लाइक कि अगर आपको फ्राइडे ऑफ मिले सैटरडे ऑफ मिले या फिर मंडे ऑफ मिले
1: मंडे एनी डे
0: Would you pick a Saturday or Friday, जो भी तुम्हारा पड़ता है या फिर
1: Monday? I don't know. There's something about Monday. मन ही नहीं लगता ये बचपन से.
0: So then Tuesday would become the next Monday.
1: I don't think so. There is something about Monday.
0: So there will be Monday, Monday, Wednesday, Thursday, Friday.
1: This is going to be the longest week ever.
0: हाँ मतलब धीरे धीरे सब अपने जो पुर्जे हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं कि हम एक ही बॉडी में सब काम करते हैं।
1: Melancholy हो गई है मुझे।
0: फिलहाल हैप्पीली शो करेगी अब मानसी 5 से 9 की दौड़ है द बिग थ्रिल के साथ एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो गेट अ चांस ऑफ विनिंग कपल इनवाइट्स ऑन हर शो सो मेक श्योर दैट यू ट्यून इन एंड ऑल द अदर इन्फॉर्मेशन व्हाट्स हैपनिंग फ्रॉम द 1st of June इफेक्टिव टुडे क्या क्या होने वाला है उसके साथ आप करेंगे बात मैं निकल रहा हूँ यहाँ से लिविंग यू विद लेट इट गो एंड हुस्न अब सी यू टुमारो शार्प एट 2 टिल 5 o'clock ऑन बिग 106.2 कीप फॉलोइंग अस ऑन आवर सोशल्स 106.2 FM गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली स्टे सेफ ड्राइव सेफ

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: This June, take your shot at millions with Big Ticket.
3: Score! I guarantee 25 million dirham grand prize.
2: Plus, 5 more winners take home 1 million dirhams each.
3: And weekly cash prizes still to be won.
2: So, what are you waiting for?
3: Buy your ticket now at bigticket.ie.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

जवानी तो इश्क होना है भाई, डेविड धवन की मूवी है, उनका मन है, वो चाहे तो अपनी हर मूवी से गाना रिक्रिएट करें, बट एक छोटी सी गुजारिश है, अगर एक कैमियो हो जाता, आई थिंक ये गाना इनकम्प्लीट है विदाउट सुष्मिता एंड सलमान। फिलहाल ऑल सेट टू कीप यू कंपनी अंटिल 9, दिस इज बिग 106.2 पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क। व्हेन आई कम बैक वी प्ले द 5-second रूल, इट्स अ फन गेम। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, लगता बहुत आसान है बट अगर खेलना है तो रूल्स बताती हूँ। फिलहाल आई थिंक आज पहली तारीख अकाउंट में आई गया होगा, नहीं आया तो एचआर को फोन करो, फॉरवर्ड करो नया रूल कि 1 तारीख को सैलरी आई जानी चाहिए।

0: insurersmarket.ae. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: देखो कैलकुलेशन मैंने सही नहीं की. मैं सुबह से लगी हुई हूँ. एक तारीख है. यू नो नया रूल है दैट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज वुड गेट पेड बाय द फर्स्ट. बट अभी अभी हमारे इन हाउस एचआर ने हमें बताया कि ये एप्लीकेबल जो है ये होगा फॉर जून की सैलरी. मतलब फर्स्ट ऑफ जुलाई को आपके अकाउंट में आपकी जून की सैलरी आ जानी चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन आज से शुरू हुआ है. अब ये जो हमारे एचआर हैं ये उज्ज्वल खन्ना ही हैं, तो मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है. इफ देयर सम एचआर काइंडली clarify, is it going to be implemented from the 1st of July, that is June ki salary? Do let me know. We've all had a great long weekend. And if you're wondering ki ab agli chutti kab aayegi, bahut jald aane wali hai. But filhal, while you're heading back home today, there is a lot of traffic. And traffic mein, the best way to kill time is to play the 5-second rule.
1: 5-second rule.
3: Oh yeah.
2: मजेदार गेम है. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. लगता है ये बहुत आसान है, बट ये उतना ही टफ है जितना आज ऑफिस आना था. अगर आपको गाड़ी में बैठे बैठे लग रहा है कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल. वी हैव गॉट आदित्य रिखारी राइट हियर ऑन बिग 106.2 पार ऑफ फन एशिया नेटवर्क.

0: मिला नहीं, मिला नहीं। और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: है, मतलब ऑलमोस्ट आधा साल, हाँ ऑलमोस्ट आधा साल दी एंड हो चुका है। फर्स्ट ऑफ जैन को प्लान था अपना बिजनेस खोलेंगे, अभी 6 महीने जा चुके हैं, 6 महीने बाकी हैं।
1: द बिग थ्रिल विद नॉन्सी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: एंड अगर आपका भी प्लान है नेक्स्ट सीजन ऑफ देसी ब्लिंग में आने का, देन बिजनेस इज द वे राइट। आई डिड नॉट सी एनी 9-to-5 एम्प्लॉय इन दैट शो, बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, देन अजमान फ्री जोन अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस करा है द वन क्लिक बिजनेस लाइसेंस। ग्रेट न्यूज फॉर ऑल दोज हु विश टू ओपन देयर स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज विद अ फी स्टार्टिंग फ्रॉम 5,555 dirhams। टू गेट योर बिजनेस लाइसेंस ऑल यू नीड इज अ बिजनेस आइडिया, बाकी दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर वीजा, योर बैंक रिक्वायरमेंट्स। बहुत ही क्विक, कंप्लीटली डिजिटाइज्ड है पूरा प्रोसेस। TNCs do apply. To get your one click license, any other information, visit kjafz.ae. While you're at it, time for the fast track song of the hour.
1: Big 106.2 fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, Mansi, this is The Big Thrill. We're playing the 5-second rule and a very, very excited Aman with us. Hi, Aman.
2: Hi, how are you?
1: I am good. Yeah, aap specially mere liye sharma rahe hain. Har ladki se aise sharma sharma ke baat karte hain.
2: Actually, I have my mom and my bhabhi along as well.
1: अब फंसा है अमान, ये बताना नहीं चाहिए था अमान मुझे. अच्छा, अमान गर्लफ्रेंड है आपकी?
2: नहीं नहीं.
1: 120% इस अमान की गर्लफ्रेंड है. 120% मम्मी भाभी नजर रखो इसके ऊपर. इसके ऊपर नजर रखो, इसकी है कोई. फिलहाल वी प्ले द 5-second rule. इट्स अ फन गेम. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज अमन. तीन चीजें बतानी है हर कैटेगरी से, बट इट हैज टू बी फटाफट खटाखट 5 सेकंड के अंदर.
0: 5-second rule.
3: ओह यस.
1: तीन शाहरुख खान के गाने. अरे
2: अमन,
1: ये देखो, एक तो मम्मी मदद कर रही है, उसमें भी सिर्फ एक जवाब दिया है.
2: Okay,
1: मैं बाबी जिसने फोन लगाया वही खेलेगा. ये रूल है यहाँ का. क्विकली टेल मी थ्री थिंग्स. मुझे लगा लड़ाई शुरू हो गई है गाड़ी में. अमान, क्विकली टेल मी थ्री थिंग्स दैट यू फाइंड ओनली एयरपोर्ट पे.
2: एरोप्लेन और टिकट काउंटर.
1: अच्छा जी.
2: एंड रेस्टोरेंट.
1: टाइम खत्म हो गया. रेफरेंस.
2: रेस्टोरेंट.
1: अच्छा, मुझे सुना गया रेफरेंस. तीन ऐसे गाने जिनमें दिल आता है. दिल. अरे रे रे रे, इतना खराब. अरे रुक जाओ. थ्री थिंग्स दैट आर ग्रीन एंड कलर एंड यू कैन ईट.
2: एवोकाडो.
1: मम्मी ने बताया. व्हाट?
2: पेंटिंग.
1: क्लास में कौन सी बेंच पे बैठते थे अमान, आप फर्स्ट या लास्ट?
2: मैं बीच में.
1: तो आगे पीछे से चीटिंग ही करी मम्मी इसने पक्का. हाय भाभी, आपका देवर बड़ा क्यूट है, बहुत ही क्यूट है. इसने खेला बहुत खराब, बट मैं 100% कह रही हूँ इसकी गर्लफ्रेंड.

0: फिर
1: क्लास में कौन सी बेंच पे बैठते थे अमान, आप फर्स्ट या लास्ट?
0: मैं बीच में.
1: सो आगे पीछे से चीटिंग ही करी मम्मी इसने पक्का. हाय भाभी, आपका देवर बड़ा क्यूट है, बहुत ही क्यूट है, इसने खेला बहुत खराब, बट मैं 100% कह रही हूँ इसकी गर्लफ्रेंड है.
2: Yes, that I know.
1: See, Bhabhi also knows. Only mama doesn't know. Mama should know na, man.
0: मम्मा भी चप्पल लेके बैठी है मारने के लिए.
1: उनको पता होना चाहिए था ना कि भाभी को पता है. ऐसा नहीं है कि मम्मी से सीक्रेट नहीं शेयर करनी, सिर्फ भाभी से ही करनी है.
0: वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मम्मी अभी देख रही है मुझे, पता नहीं अभी क्या होगा बोल के.
1: मम्मी को थोड़ी लड़ाई भाभी से करनी चाहिए और थोड़ी सी अमान से.
0: भाभी सपोर्ट करेगी मुझे.
1: हाँ बेटा, जब जब सास चप्पल लेके खड़ी हो ना, तो कोई भी भाभी सपोर्ट नहीं करेगी, याद रखना है ना. It was lovely talking to the three of you. You guys drive safe and thank you so much for calling and playing so bad, Aman. Bye. Yeah, 5 second rule. अगर आपने खेलना है कि रूल है, कॉल करना 800-1062 पर.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Say whoa!

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Welcome to the Big Thrill. I know it's a Monday. हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं यार कि लॉन्ग वीकेंड के बाद वाला मंडे है. गुड न्यूज ये है कि कुछ दो हफ्ते बाद एक और लॉन्ग वीकेंड आने वाला है. बट फिलहाल वी प्लेइंग द 5-second रूल. इट्स अ फन गेम. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज. आपने तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. साउंड ईजी बट जितनों ने अभी तक खेला है आसान नहीं है ये. ऑल्सो इट्स आर माधुवंस बर्थडे टूडे. बर्थडे उनका गिफ्ट आप जीत सकते हैं. ओपन मूवी टिकट जीतने का मौका. ऑल द डिटेल्स कमिंग अप. फिलहाल टेकिंग यू टू हमारा जमाना बच्चों. आई एम टॉकिंग टू जेन ज़ीज़. आई लव लव लव दिस वन. हंसराज हंस की आवाज. व्हाट अ स्टनिंग वीडियो. आई थिंक ग्रोइंग अप इन द 90s जो इंडी पॉप म्यूजिक वीडियोज के मॉडल्स होते थे ना, टोटली अ स्नैक अगर आज की भाषा में बोलूं मैं. उनका चार्म, उनका रिजी अलग होता था.

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurancemarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: देखो, मैं तो जिक्र कर भी नहीं रही हूँ कि आज मंडे है आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड, बट क्या करें, आवाज में ही ऐसी लर्जिश है. आई डोंट नो इफ दैट उर्दू इज राइट, बट आवाज से ही लग रहा है कि आज मंडे है ना सत्तार.
3: जरूर.
2: कितना दुख हुआ आज सुबह अलार्म जब बजा, ऑफिस जाना, फिर सारा दिन नॉट सो फ्रेंडली कॉलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करके वापस घर आना.
3: नहीं, वैसा कुछ नहीं था. एक्चुअली एक्साइटेड था जाने के लिए ऑफिस, क्योंकि आई जस्ट स्टार्टेड माय न्यू जॉब.
2: अच्छा, नए नए हो ना, इसलिए एक्साइटमेंट है. मैं 2 महीने बाद बात करूंगी.
3: जी जी.
2: दिल लग रहा है ऑफिस में, करते क्या आप?
3: जी, मैं एक मॉर्गेज एडवाइजर हूँ.
2: ओह वेरी नाइस, अच्छी अच्छी लड़कियाँ होंगी फिर तो ऑफिस में.
3: नहीं, तो
2: अच्छा, एक भी लड़की नहीं है टीम में?
3: है, लेकिन ना के बराबर है.
2: ये तो सडनली इंजीनियरिंग कॉलेज वाली बातें हो गई यहाँ पे. Sattar will play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Teen cheeze batani hai 5 seconds ke andar. All the very best.
4: Thank you. 5-second rule.
5: Oh yeah.
2: 3 things that you absolutely love about your new job. Salary.
3: Environment hai.
2: देखो, एनवायरनमेंट तो शुरू में सब अपना बेस्ट ही दिखाते हैं. नई नई डेटिंग एंड नई नई जॉब, हमेशा सब अपना बेस्ट ही दिखाते हैं. 2 महीने बाद बात करना.
3: और टाइम खत्म भी है. सॉरी,
2: नए कपड़े के ऑफिस से मिले?
3: नहीं, मतलब नया अटायर पहन के जाना पड़ेगा.
2: अच्छा. 3 things दैट यू नोटिस इन अ गर्ल.
3: गर्ल, उसके आंखें और बाल.
2: ती लंबे बालों वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं, छोटे बाल वाले तो
3: नहीं. बॉयकट
2: वाली लड़की.
3: जी जी.
2: यार,
3: जी,
2: ये
3: जी,
2: पहला जी. बंदा दिखा है. यूजुअली बॉयफ्रेंड्स भी कहते हैं, हस्बैंड्स भी कहते हैं कि बाल मत कटवाना, ये पहला बंदा है जिसे बॉयकट बाल अच्छे लगते हैं लड़कियों में.
3: जी जी जी.
2: वेरी नाइस यार, वेरी
3: इम्प्रेस्ड.
2: वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. आई लाइक मेन हु ब्रेक स्टीरियोटाइप. फिलहाल 3 सलमान खान की मूवीज.
3: एक है अजय.
2: क्या? अरे, बॉयकट वालों में लग गए.
3: सलमान खान का फैन नहीं हूँ.
2: तो किसके फैन हो फिर? इमरान हाशमी के?
3: नहीं, खुद के. बस खुद ही को पसंद करो बस.
2: मैं अपना फेवरेट हूँ. अच्छा, क्विकली नेम 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में दिल आता है.
3: दिल है के मानता नहीं, दिलबर
2: है. दिलबर? दिलबर कोई मूवी नहीं थी, गाना था दिलबर. दिलबर दिल इज नाइस, बट फटाफट खेलने वाला गेम है यार, या आप बहुत धीरे धीरे खेल रहे हो. 3 vegetables दैट आर ग्रीन.
3: ग्रीन, एक है करेला
2: और
3: एक है पालक. और
2: 5 सेकेंड फटाफट, यू बी वेरी क्विक. सत्तार, नेम 3 बॉलीवुड एक्टर्स जिनके नाम वी से शुरू होते हैं.
3: वी
2: वी
3: विक्की कौशल.
2: और अब परसों बताना, मुझे समझ ही नहीं पा रहे 5 सेकंड रूल क्या है.
4: 5 सेकंड रूल.
5: ओह यह.
2: देखा, अब मुझे रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है. ये तो मैंने कहा ना, इतना आसान है नहीं जितना ये साउंड करता है. बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड यार सत्तार. मुझे हमेशा से लगता था यू नो कि बॉलीवुड ने ऐसा स्टीरियोटाइप किया हुआ है जिन लड़कियों के बाल लंबे होते हैं. यू नो, इवन कुछ कुछ होता है में भी, जब तक काजोल ने बाल लंबे नहीं किए थे तब तक शाहरुख को वो अच्छी नहीं लगी थी.
3: नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है.
2: तो मिल गई है,
3: जमाना डिफरेंट है.
2: बॉयकट वाली
3: नहीं मिलते नहीं ना वो आसानी से.
2: सैलून के बाहर जाके बैठो ना.
3: नहीं, उनके खुद के अलग रूल्स है.
2: बाहर बैठो, लेडी सलोन के अंदर मत जाओ. जो लड़की बाल कटा के ट्राई करो. बट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. बाय.
3: बाय.
2: ये 5 सेकंड रूल आपने खेलना है, तो एक ही रूल है, मुझे कॉल करना है 800-1062 पर.

सारी दुनिया कल आईपीएल का फाइनल देख रही थी, मैंने फिर से देखी कल हो ना हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे गुड लुकिंग क्रिकेटर्स में तो इंटरेस्ट है बट गेम में कुछ ज्यादा नहीं। उभरने के लिए एक और वीकेंड की जरूरत होती है, तो कमिंग वीकेंड यू कैन गो एंड वॉच एनी मूवी दैट यू फील लाइक। स्टे राइट हियर। In fact, some brilliant line-up when I talk about Bollywood, from Cocktail 2 to Hai Jawani to Ishq Hona Hai to Bandar. We've got some fantastic movies lined up. So, this is a great chance. Open movie tickets jeeto. Jo movie achhi lage, wo jaake dekho. I'll give you a chance when I come back. All of these songs right here on Big 106.2, a part of Fun Asia Network. Keeping you company, main hoon Mansi. Good evening.

0: अभी यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाना?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is the Big Thrill, Mansi, and today, 1st of June, is Maddie's, our Madhavan's birthday. We love him, we love his work. In fact, a lot of us love him from the days jab wo television kiya karte the, like shows, Banegi Apni Baat, Sailab. He's also done a game show, if you remember, Tol Mol Ke Bol. But as millennials, we fell in love with Maddie. Madhav Shastri, matlab rehna hai tere dil mein aaj bhi. सालों बाद हमें रटी हुई है एंड दैट्स वन मूवी दैट्स अ कंफर्ट मूवी. हम में से कई मिलेनियल्स जो सिंगल हैं आज भी वैसे ही प्यार ढूंढ रहे हैं. बट आज माधवन का बर्थडे है, गिफ्ट आपको मिलेगा एंड आई एम लुकिंग फॉर द बिगेस्ट RHTDM फैन. कौन है सबसे बड़ा रहना है तेरे दिल में का फैन? आई एम श्योर हम में से कई लोगों की मूवी जुबानी रटी हुई है, मुझे तो डायलॉग्स भी रटे हुए हैं. बट अगर आप भी इनमें से हैं देन दिस इज योर चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स टू गो एंड वॉच एनी मूवी दैट यू फील लाइक. वी सेलिब्रेटिंग मैडी दिस इवनिंग विद द आइकॉनिक रहना है तेरे दिल में. तो अगर आपको भी लगता है कि आप सबसे बड़े फैन हैं ऑफ दिस मूवी, गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062. लेट्स सी कौन है सबसे बड़ा फैन of the movie and who's walking away with open movie tickets. Asha, mujhe kehna.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री, तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, this is the Big Thrill of Mansi, and today we're celebrating our Madhuan. And when I talk about Maddie, I talk about Rehna Hai Tere Dil Mein. Bahut sare messages aaye, but our randomizer has picked Govind. Hi Govind, good evening.
2: Hi Mansi, good evening.
1: Kaisa raha aapka long weekend?
2: Long weekend was good. Thoda bahut outing ho gayi, rest ho gaya, aur बच्चे के स्कूल के एग्जाम है, उसकी भी तैयारी हो गई।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब टोटल पापा ड्यूटीज आपने निभाई हैं, बट अभी मैं आपको आपके कॉलेज के और फर्स्ट क्रश वाले दिनों में ले जाना चाहती हूँ। यू've टोल्ड मी दैट यू आर अ बिग फैन ऑफ रहना है तेरे दिल में।
2: यस, जब ये रिलीज हुई थी आई वॉज इन 11th ग्रेड, जब मैं यहाँ पे भी नहीं आया था।
1: हाँ।
2: तो एक ये रियली बहुत लाइक रोमांटिक मूवी, और मतलब हम जो 80s 85 के 90s के लोग हैं उनके लिए तो मतलब समझो यही लव स्टोरी है। मैडी का जो चार्म है मतलब अभी तक जिंदा है बिकॉज ऑफ दिस मूवी।
1: हमें ट्राई किया था इस मूवी की तरह कि अगर लड़की का ऑलरेडी कोई फियांसे है तो उस पे ट्राई करूं सो दैट वो आपसे पट जाए।
2: नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था।
1: अच्छा।
2: ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आई एम मैरिड एंड स्टिल आई कैन ट्राई।
1: हैं, ये कैसा जवाब हुआ कि इन फ्यूचर आई एम मैरिड एंड आई कैन स्टिल ट्राई? अब मैं इसके आगे आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। आई थिंक इट्स मी, आई ब्रिंग आउट द डार्क साइड ऑफ हस्बैंड्स ऑन एयर, बट फिलहाल आई एम लुकिंग फॉर द बिगेस्ट रहना है तेरे दिल में का फैन। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर आपने 3 सही जवाब मुझे दे दिए तो ओपन मूवी टिकट्स आपके हो जाएंगे। कितनी बारी देखी है आपने मूवी?
2: मैंने ये 3-4 बार देखी हुई है।
1: चलो जी, लेट्स सी कि आप कितने सही जवाब मुझे दे पाते हैं इस मूवी के। पहला सवाल ये है कि आर माधवन के कैरेक्टर का नाम वैसे तो मैडी था, बट रियल नेम क्या था, फुल नेम?
2: माधव शास्त्री।
1: बिल्कुल सही जवाब। माधव शास्त्री के जो फादर दीनानाथ शास्त्री, जो अनुपम खेर ने कैरेक्टर प्ले किया था, उनकी शॉप थी, किस चीज का बिजनेस था?
2: उनका शॉप का सीडी एंड ऑल,
1: सीडी एंड म्यूजिक। ऑलराइट, वीडियोस एंड सीडी गिवन। कॉलेज में जब सैफ अली खान का कैरेक्टर राजीव और मैडी, इनकी बहुत लड़ाई दिखाई गई है, बट एक स्पेसिफिक शर्त लगती है, कंपटीशन होता है जिससे बहुत बड़ी फाइट होती है, तो वो क्या कंपटीशन था? वाज इट अ बॉक्सिंग चैंपियनशिप और अ बास्केटबॉल मैच?
2: बॉक्सिंग चैंपियनशिप।
1: बिल्कुल गलत जवाब। बास्केटबॉल मैच था।
2: बास्केटबॉल मैच।
1: बास्केटबॉल मैच था।
2: ओके ओके, you can give me one more try.
1: Of course, I have one more questions. Where Maddie in the end was planning to move permanently movie ke end mein, and uske sare dost jo use convince karte hain airport pe jaake ki na jaye, to wo kahan jane wala tha? Was he going to London or to the US?
2: US.
1: San Francisco, USA is the right answer. All right, this is the deciding one. If you're such a big fan, to ye sun ke aap samajh jayenge ki ye gana hai kaun sa. कौन सा गाना है ये?

0: ये देखो, ये गांव इतने दर्द में रहे हैं और अभी मुझे कह रहे थे कि हाँ मैं मैरिड हूँ बट मैं फ्यूचर में ऐसा कर सकता हूँ. बट कंग्रेचुलेशंस गोविंद, आई एम गिविंग यू ओपन मूवी टिकट्स टू गो एंड वॉच एनी मूवी दैट यू फील लाइक. बड़ी अच्छी लाइनअप है बॉलीवुड की. सो अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट गाना रहना है तेरे दिल में से कौन सा है?
1: कैसे मैं कहूँ तुझसे रहना है तेरे दिल में. और एक्चुअली एक्चुअली रियली मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ इस मूवी की सबसे टॉप जो मेरी फेवरेट है. उसमें ये दोस्त लोग डिस्कस करते हैं और मैडी बुरी तरह टूटा हुआ रहता है और उसको एक लाइन बोलता है वो कि जिंदगी की असली लाइफ के टाइटेनिक भी लड़के ही डूबते हैं.
0: आपकी बातें सुनकर तो मुझे नहीं लग रहा है कि लड़के डूब रहे हैं जो शादी के बाद बच्चे की पढ़ाई कराने के बाद बोल रहे हैं कि मैं फ्यूचर में लड़की पटाऊंगा. मुझे बहुत डाउट है आपके स्टेटमेंट पे. गोविंद चलो आई विल प्ले योर सॉन्ग फ्रॉम रहना है तेरे दिल में. यू एंजॉय व्हाटएवर मूवी दैट यू फील लाइक एंड थैंक यू सो मच. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
1: Wow, you made my Monday more productive.
0: Oh, thank you so much. You have a great evening. Bye.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2
2: हेलो,
3: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना। हेलो, सुन रहे हो ना?
4: हे

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: daughter. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
1: Good evening, this is the Big Thrill. Aaj pehli tarikh hai, 1st of June se 8 major changes that have come in and I think ye sab ke liye janna bahut zaruri hai, especially you and I staying in Dubai.
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: I'm starting with a good news. Big change to UAE salary rules for private sector effective from today, 1st of June. Ab salary jo hai wo pehli tarikh ko employee ke account mein credit honi chahiye. And Ministry of Human Resources and Amortization, Mohri ne introduce kara hai naya rule requiring private sector companies in the UAE to pay employee on the first day of every month starting 1st of June. So matlab ab June ki jo salary है वो हमें 1st of July को ही मिलनी चाहिए. If the employer fails to do this, तो serious measures against the organization किए जाएंगे. अब not so good news, 5% VAT will be added to Salik gates starting from today. जब से मैंने license लिया है, Salik पे VAT लग गया है, petrol का price बढ़ गया है, parking महंगी हो गई है, so ये एक नया rule है. Parking से याद आया, Parkin, the largest provider of paid public parking facilities and services in Dubai, is installing more than 500 curbside and pole cameras, and this is the first of its kind in the region across Trade Center, Burj Khalifa, Al Cornish mein ye jo cameras shuruaat mein lagaye jayenge, and uske baad 200 cameras aur lage jayenge. Also paying for parking goes digital as a part of government's कैशलेस स्ट्रैटेजी फॉर 2026. पार्किंग ने जो है अनाउंस किया है कि अब आप डिजिटली ही पे करेंगे. कैश पेमेंट्स एंड हो चुके हैं आज से. यू कैन हाउ एवर कंटिन्यू टू मेक योर पेमेंट्स विद योर नोल कार्ड्स, एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रांजिशन टूवर्ड्स डिजिटल पेमेंट्स, पार्किंग हैज एनकरेज कस्टमर्स टू डाउनलोड एंड मेक यूज ऑफ द ऐप. इट्स वेरी वेरी इजी ऐप. बींग अ न्यू ड्राइवर, इट रियली हेल्प्स मी. ये आपको रिमाइंड भी कराता है कि भाई पार्किंग एक्सपायर होने वाली है. ऑल्सो न्यू पार्किंग सिस्टम अनाउंसड इन द मरीना मॉल, दुबई मॉल एंड दुबई हिल्स मॉल, एंड इससे कोशिश की जाएगी कि सब गाड़ियों को जो है पार्किंग मिले. वैट जो है वो सालिक गेट्स इन दुबई में ऐड हो चुका है फ्रॉम द 1st ऑफ जून. यूएई लीगल एज ऑफ अडल्टहुड रिड्यूस हो चुकी है फ्रॉम 21 टू 18 अंडर द न्यू लॉ, एंड ऑफ कोर्स दे विल बी क्विकर गवर्नमेंट प्रोसीजर्स फ्रॉम नाउ ऑन. सो ऑल ऑफ दीज न्यू चेंजेस एंड साथ में बहुत ही बेहतरीन गर्मी. फिर आई प्लेइंग यू द ओजी वन, बिकॉज आज ही जो है लॉन्च हुआ है ऊंचा लंबा कद 2.0 फ्रॉम वेलकम इन द जंगल, बट आई थिंक लेट्स स्टिक टू द ओजी दिस इवनिंग राइट हियर ऑन बिग 106.2 पार्ट ऑफ फन एशिया नेटवर्क.

0: listening to Big 106.2. This is the Big Thrill, keeping you company of Mansi, and the very first day after the long weekend.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: It's very, very hard, but finally it's the end of the Monday, the deadly Monday. वैसे आज ऑफिस में आते ही आपने दो ही चीजें अपने कॉलीग से पूछी होगी कि एक लॉन्ग वीकेंड कैसा गया, क्या किया, और दूसरा हाय कितनी गर्मी है. अब कितने भी साल आप रह लो, गर्मी हर साल उतनी ही लगती है. एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ समर. अकॉर्डिंग टू NCM, द हाइएस्ट टेम्परेचर विल टच 46 degrees this month, and for those in the city, it's going to be a little better because temperatures in Dubai aaj the around 38 degrees while Abu Dhabi mein 39 tha. So yeah, after a dusty last week, NCM ne announced kara hai clear days for Dubai and Abu Dhabi, but temperature jo hai is hafte kafi rise karenge. Thursday ko 40 degree tak jayega, and Friday it will get better, 35 degrees in Dubai. Like I said, kitne bhi saal reh lo, गर्मी उतनी ही लगती है जितनी पहले साल लगी थी, राइट? ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कि हाईएस्ट एवर टेम्परेचर का अगर मैं बात करूं, जुलाई 2002 में था, विच वाज 52.1. यस, दैट वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड. आई होप वी डोंट सी दैट इन 2026. वी हैव ऑलरेडी सीन इनफ दिस ईयर. फिलहाल कीपिंग यू कंपनी, मानसी प्लेइंग यू दिस वन फ्रॉम धुरंधर 2.

0: ऑफिस में मैं अकेली रहती हूँ, आई थिंक बिल्डिंग में भी मैं अकेली रहती हूँ. 5 मिनट पहले मुझे ऐसा लगा स्टूडियो का दरवाजा खुला है. इट्स नॉट एनीथिंग, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रैंडम थ्रिलर्स दैट आई सॉ ओवर द लॉन्ग वीकेंड, फ्रॉम एक हसीना थी टू फिदा, विच आई नो आर नॉट स्कैरी, बट स्टिल यू नो व्हेन यू वॉच दीज थ्रिलर्स सडनली आपको एवरीथिंग मिस्टीरियस लगने लगता है.
1: और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और.
0: ऑल्सो मैंने एक बड़ी अच्छी और थ्रिलर देखी, अनकही, विच इज नॉट अ थ्रिलर थ्रिलर, इट्स बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड रोमांटिक काइंड ऑफ अ मूवी. विक्रम भट्ट के थ्रिलर्स बैक इन अर्ली 2000s बड़ी कमाल होती थी, स्पेशली द म्यूजिक. एंड सरप्राइजिंगली आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद आफ्ताब अनीशा की एक्टिंग. सो इफ यू वॉन्ट टू वॉच अ क्रिंज थ्रिलर, अनकही इज माई रिकमेंडेशन.

0: एंड इसी के साथ टाइम फॉर मी नाउ टू से बाय बाय. अभी वेंसडे तक तो माहौल ऐसे ही रहेगा, लगेगा हाय कितना लंबा हफ्ता है. आफ्टर वेंसडे हम आएंगे ग्रूव में कि बस अब यही जिंदगी है, हो गया लॉन्ग वीकेंड.
1: द बिग थ्रिल विद नॉन्सी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बट एक और लॉन्ग वीकेंड आ सकता है इन टू वीक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द इस्लामिक न्यू ईयर. कुड बी ऑन द 16th और द 17th, ट्यूजडे और वेंसडे. ये मिड वीक है, सो वी माइट गेट एक एक्स्ट्रा मिड वीक हॉलीडे. और प्रॉब्ली अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, डिपेंड्स. एंड ये लॉन्ग वीकेंड में बदल जाए, सो यू नेवर नो एंड यू नेवर से नेवर. टाइम फॉर मी नाउ टू से गुड बाय, गुड नाइट. आई विल सी यू टुमारो. डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स, 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन ऑल्सो से हाय टू मी. आई एम मानसी टॉकिंग एंड आई टॉक टू यू हियर 5 से 9, एंड उसके बाद आप मुझे मानसी टॉकिंग पे हेलो बोल सकते हैं. फिलहाल मैं आपसे बाय बाय बोल रही हूँ. अब मेरे लिए ना यहाँ से जाने के बाद आजकल एक नया टास्क होता है, गाड़ी चलाना, गाड़ी चला के घर जाना. आई एम बेटर नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 3 वीक्स, बट मुझे ना उस दौर में जाना है कि मैं इन्जॉय कर रही हूँ, मतलब गाड़ी चल रही है, मैं म्यूजिक इन्जॉय कर रही हूँ. अभी मैं कुछ इन्जॉय नहीं करती हूँ. ऐसा लगता है वॉट ब्लिंकर्स ऑन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एज अ ड्राइवर. नॉट न्यू नॉट ओल्ड, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन सड़क पर करना चाहिए. बट अभी तो मेरी बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लगता है कि मैं जंग लड़ने जा रही हूँ. बट दिस गेट्स बेटर, आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल. एंड इनफैक्ट मेरे खुद के एक्सपीरियंस से 3 हफ्ते में मैं थोड़ी रिलैक्स्ड हूँ कंपेयर टू द फर्स्ट डे. सो या आई एम गिविंग माई सेल्फ अनदर 2 मंथ्स एंड देन आई विल ऑल्सो बी वन ऑफ यू जो ऐसे ऐसे लेन चेंज करेंगे. फिलहाल लीविंग यू विद धुरंधर 2 एंड उसके बाद सम वेरी वेरी लॉन्ग ड्राइव वाला अनवाइंड करने वाला म्यूजिक. स्टे राइट हियर, दिस इज बिग 106.2 पार्ट ऑफ फन नेशन नेटवर्क. गुड नाइट.

0: 101.2 The Beat of Bollywood.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Hey, budde.
3: Namaste.
2: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
3: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
2: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
3: नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
2: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
3: आ रहा है। देखिए, ये गुस्सा नहीं है।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE कॉल 800-ALFRED-247 द बिग जेल Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: तू मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।